धाति धान धाति तागेन ता धात्र के धागे धिन तात्र के धागे धिन धात्र के धागे धिन ना ना ना ना टिटक धिन धिन टिटक तिन तिन टिटक धिन धिन ता तिता धात्र के धात्र के धात्र के धात्र के धात्र के धात्र के